आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड डाउनटाउन रैली के जो है फेटविल स्ट्रीट और सिटी प्लाजा में आज से जो है वो एक फेस्टिवल शुरू हो चुका है जो कि काफ़ी फेमस है। फेस्टिवल का नाम है अफ्रीकन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल। जी हाँ, ये जो है लेबर डे वीकेंड पर होने वाले इस टू डेज में फ्री और पारिवारिक उत्सव में लगभग 40,000 लोगों के जुटने की उम्मीद है, जहां संस्कृति, कला और म्यूजिक का अनूठा संगम जो है वो देखने मिल रहा है। ये फेस्टिवल को आपने ज़रूर एंजॉय करना चाहिए एंड ये बहुत ही ट्रेडिशनल एंड बहुत ही अच्छा शो होता है, आपने एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

हाय कसका है, एंजॉय किया आपने गाना? गाना था वाकई में काफ़ी ब्यूटीफुल, जिसने सेट कर रखी है इस वीकेंड की वाइब। स्टेट ऑफ डाउनटाउन की नई रिपोर्ट के अनुसार डाउनटाउन रैली में वीकेंड पर लोगों की चहल पहल और आर्थिक गतिविधियों में भारी उछाल आया है। क्या बात है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को डाउनटाउन रैली की औसत दैनिक आबादी दैट इज 1,21,000 से अधिक दर्ज की जा रही है, जिसका मेन रीज़न जो है वो विकास, डेवलपमेंट और वीकेंड पर ग्लेनवुड साउथ जैसे इलाकों में डिनर और शॉपिंग के लिए जुटने वाली भीड़ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मतलब ऐसा लगता है कि हम इंडिया में ही है ना, जो महक आती है स्ट्रीट से एंड जो मज़ा आता है, जो स्वाद आता है, इट्स लाइक अप टू द मार्क होता है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। मैं यही कह रहा था कि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स डिस्कशन कर रहे थे, नॉर्मल डिस्कशन। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि यू नो, एक सर्टन एज, मतलब लाइक 35 और वॉट एवर ये एज में कुछ ना कुछ करियर से रिलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, नंबर ऑफ इनकम सोर्स क्रिएट करनी चाहिए। बहुत बार ख्याली पुलाव हम बनाते हैं कि ये कैफ़े शुरू करेंगे, वो कैफ़े शुरू करेंगे, ये बिज़नेस करेंगे, वो बिज़नेस करेंगे, लेकिन एक ही चीज़ हमें रोकती है। पहली तो हम काफ़ी कंफर्ट जोन में हैं, हमें कुछ करना ही नहीं है, बस अच्छी सैलरी मिल रही है, दैट्स इट। एंड दूसरी कि हमें डर लगता है कि अगर यार नहीं चला तो क्या होगा। ऐसा सोचना नहीं है, सोच को बदलिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। एंजॉय करते अगला ही गाना। रिस्क लेना ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिस्क कब लोगे, है ना। एज ज़्यादा होने के बाद तब नहीं होगा कुछ, जो करना है अभी करना है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नैरो पर निर्बना नाइट्स एंड एंजॉय किया आपने ये गाना। हेलो हाय कसो काए, मैं यही कह रहा था कि अभी गणेश फेस्टिवल जो है वो नज़दीक आ रहा है एंड गणेश जी का आगमन जल्द होने वाला है। तो गणेश जी की सुंदर सुंदर मूर्तियाँ देखने के बाद जो कामनेस, जो मुस्कान चेहरे पे आ जाती है वो अलग लेवल के। कितने सुंदर रूप है बापा के, बहुत सुंदर रूप, मनमोहक रूप, सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाच। जल्द से जल्द ये आरती सुनने मिलेंगी। एंड उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग गणेश जी की अलग अलग मूर्तियाँ बनाते हैं, लाइक अलग अलग अवतार में, लेकिन गणेश जी का एक सुंदर रूप है, उसे आप बरकरार यदि रखते हैं तो वही चीज़ बेटर रहेगी। नहीं तो आप किसी पुष्पा भाऊ को गणेश जी बना दिलाए, सो इट्स मीनिंगलेस। ऐसा मत करो यार, एंजॉय करते हैं फिलहाल। अगला गाना बने रहिएगा रेडियो।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स। अब वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा सेगमेंट का, दैट इज बॉलीवुड न्यूज सुनने का। तो बॉलीवुड की गलियारों से, मुंबई मायानगरी से पहली खबर आपके लिए कि ये थिएटरों में मचा मिर्जापुर द मूवी का गदर। गदर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, गदर मतलब अच्छा खासा है ना। तो भाई साहब, कल शुक्रवार को रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जो ओपनिंग ली है उनसे सबको लग रहा है कि क्या फिल्म है। आज शनिवार को तो दूसरे दिन सिनेमा घरों में पैर रखने की जगह नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि मुन्ना भैया का पागलपन, कालीन भैया का वो पुराना भौकाल और गुड्डू भैया का गुस्सा बड़े पर्दे पर देखने का अलग ही लेवल है। करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफों के पुल बांध दिए। हालांकि रसिका दुगल यानी हमारी बीना भाभी और टीवी एक्टर मोहित मलिक के कुछ सीन्स सोशल मीडिया पर बहुत चर्चित रहे।

मतलब ये कह सकते हैं कि जो मूवी है ये काफ़ी बेहतर है एंड सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। कुल मिलाकर कहे तो अगर आप इस वीकेंड किसी सॉलिड क्राइम थ्रिलर के मूड में हैं तो थिएटर्स में बंदूकें जो हैं वो फिर से गरज चुकी है, जाकर आप मज़ा ले सकते हैं। मज़ा आ रहा है, मतलब मिर्ज़ापुर का फैन लेवल तो अलग लेवल का है, उससे भी अलग फ़ैन लेवल है गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर का अगर ऐसा कुछ नया पार्ट या ऐसा कुछ निकलता है तो फैंस को बड़ी खुशी होने वाली है। फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ तो आई नहीं है, लेकिन अगर आती है तो नथिंग इज़ लाइक दैट, ऐसे मेरे लिसनर्स का कहना है। तो एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, इस प्यारी सी शाम में ये गाने का एंजॉयमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है। बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोग।

Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड अगली खबर जो है वो बिग बॉस 20 का लेटेस्ट ड्रामा। जी हाँ, सलमान खान एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल बिग बॉस 20 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और सेट के सलमान खान के कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहे हैं। वीडियो में भाईजान जो है वो फोटोग्राफर्स पर बुरी तरह भड़कते नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो लगातार पोज देने की जिद कर रहे थे एंड सलमान ने सीधे शब्दों में डांट लगाते हुए कहा कि कैमरे के सामने इस तरह आने की ज़रूरत नहीं है। वैसे सलमान खान का ये गुस्सा जो है वो जायज़ है क्योंकि बहुत इरिटेट करके रखा था एंड अक्सर प्राइवेसी को लेकर हमारे सल्लू मियां जो है वो सख्त रहते हैं। इसके अलावा सलमान खान अपने भाई अरबाज और मलाइका के बेटे अरहान खान को भी बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, तो बिग बॉस के फैंस तैयार हो जाए क्योंकि इस बार का सीजन शुरू होने से पहले ही भाईजान का पारा जो है वो हाई हो रखा है।

0: Farrell.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पुनर्वदा नाइट्स, एंड अगली खबर जो है वो बहुत दिलचस्प है। खबर ऐसी फिल्म से जुड़ी है जिसने बड़े बड़े स्टार्स की बोलती बंद की है। फिल्म का नाम है हनुमान अंश। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 2.25 करोड़ के बजट की बनी इस फिल्म ने कमाई के मामले में 51 साल पुराना जय संतोषी माँ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए वो खुद गांव-गांव घूमकर माइक पर अनाउंसमेंट करते थे और लोगों को जोड़ते थे। कमाल की बात देखिए, आज ये फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और कई राज्यों में टैक्स फ्री भी हो गई है। इस फिल्म ने बुंदेलखंड के एक गायक जो है उनकी किस्मत भी चमका दी है, जिन्हें अब बॉलीवुड के सितारे जो है बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। कंगना रनौत ने भी यहाँ बहुत अच्छे से फिल्म को डिस्क्राइब किया है, एंड ये फिल्म नहीं बल्कि सत्संग है। सच में कंटेंट अच्छा हो तो पब्लिक दिल खोल कर प्यार करती है, और मैं विशाल चतुर्वेदी के बारे में तो क्या ही कहूँ।

एंड में बात कर रहा था कि बुंदेलखंड के गायक सुनील लोधी ये एक नेत्रहीन है, मतलब ब्लाइंड है, और जिस तरह से उन्होंने गाना गाया है ये काबिले तारीफ है एंड बहुत सारा अच्छा उन्होंने कहा है, अच्छा किया है। सो लाइक ऐसे आर्टिस्ट को देख के बिना एक इंस्पिरेशन बहुत लोगों को मिल रही है एंड यू नो कंटेंट अगर अच्छा रहे तो डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है आपको पीआर टीम रखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको महंगे महंगे प्रमोशन करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है पब्लिसिटी स्टंट करने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है मनगढ़ंत कहानियाँ रचने की। अगर कंटेंट अच्छा हो तो पब्लिक वाकई में सर आँखों पर बिठाकर कंटेंट को निहारती है, उतना प्यार देती है, इसीलिए अच्छा कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आज के इस युग में अच्छा कंटेंट भी बन रहा है, ये समझ में आ रहा है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

ना नाइट्स एंड वक्त इतना अच्छा है, काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, अच्छा माहौल बना हुआ है, अच्छा समा बता है। मैं यही कह रहा था, थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नायरा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल प्ले स्टोर से। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, आफ्टर दैट यू विल गेट एन ऐप एंड एप्लीकेशन। जैसे ही आपको मिलता है आप सुन सकते हैं हमारे एनर्जेटिक आरजेस के एनर्जेटिक शोज, एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक, मज़ा आ जाएगा, है ना। देश और दुनिया के किसी भी कोने से आप रेडियो नायरा सुन सकते हैं, शर्त बस इतनी है कि आपका नेटवर्क जो है अच्छा रहना चाहिए। अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल माय लिसनर्स, एंजॉय करते हैं इस प्यारे से वीकेंड में। अगला ये गाना, बने रहिए।

वाला था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड डिनर सब लोगों का साथ में चल रहा होगा। लोगों का अपने साथ, अपने यारों के साथ, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एंड यू नो ये टाइम होता है डिनर का। डिनर के टाइम में जो गॉसिप्स होती है, जो चीज़ें सोचते हैं, वो तो अप टू द मार्क। एंड क्रेविंग जो है मीठा खाने की डिनर के बाद, वो तो ऑफ कोर्स हो ही रही होगी। क्रेविंग होनी चाहिए, एंड क्रेविंग जो है वो फुलफिल भी करनी चाहिए। बस कैलोरीज को बर्न करना ना भूलिएगा आने वाले वीकडे में। 7 से 10 का ये टाइम मेरे प्यारे लिसनर्स के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा पर, निर्वाणा नाइट्स ये शो लेकर आता हूँ मैं। 7 से 10 शो मेरा रहता है। एंजॉय योर वीकेंड, मिलते हैं कल। गुड नाइट, शब्बा खैर।

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Naira mein kho jao Pakka Desi.
2: आपकी गीत बाजार की फ्लाइट अफरोज ताज और जॉन कॉर्डवेल के साथ तैयार है.
3: Every Sunday 10 to 12 noon, let's fly with Geet Bazaar.

साउथ एशिया रेडियो 10 to 12 नून एवरी संडे संडे के संडे यू वांट म्यूजिक फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया लिसन टू गीत

0: तुझको समझूं सबकी माँ, किसको मानूं अपनी माँ। समझ फरमाइए कि तुझको समझूं सबकी माँ, तो किसको मानूं अपनी माँ, और तन की माँ वतन की माँ, या तू मेरे मन की माँ। खातिनो हजरात, सबको पहले तो जन्माष्टमी का बहुत बहुत बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और मुबारकबाद और बधाइयाँ। और ये नगमा भेजा था कृष्ण जी की जयंती पर मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा ने, और उन्होंने कहा है कि जन्माष्टमी सबको बहुत बहुत बहुत बहुत मुबारक हो। वी आर योर होस्ट सफरोज ताज जान कॉलवेल एंड रवि चिरिकुड़ी। 10 से 12 सुबह, 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, एंड दिस इज गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश।
1: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with the new double broadcasting power, also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh-Durham.
2: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
0: अगला नगमा बहुत खूबसूरत मोहतरम जनाब मो हसन साहब की जानिब से आया है, मोहम्मद रफी की आवाज में। क्या बात है बिठाकर दिल की महमिल में, कहा तुम पास हो दिल के। देखिए, कभी तो वो दिल में बिठाते हो, कहते हैं तुम दिल के पास हो, पास थोड़ी हो, तो दिल में ही हो भाई। बिठाकर दिल की महमिल में, कहा तुम पास हो दिल के, मुझे मालूम है तुम दूरियां रखते हो मिल मिल के। यू आर लिसनिंग टू गी

मेरे दिल की ये फितरत है, उदासी छाई रहती है। समा थरमाए कि मेरे दिल की ये फितरत है, उदासी छाई रहती है, और तुम्हारी एक उदासी ने भरम रखा मेरे दिल का। हजरत जयपुरी का कलाम, शंकर जयकिशन की मौसीकी, ब्रह्मचारी फिल्म का ये नगमा था। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी में दुल्हन बनाकर, रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। उदास तो होंगे ही भाई, क्योंकि आप दिल के झरोखे में बिठा कर कह रहे हैं दिल के पास। मोहतरम जनाब मोहसन साहब ने ये फरमाइश की, बहुत खूबसूरत। तो अगली फरमाइश भी इनकी बहुत खूबसूरत, देखते हैं कितना वक्त हमारे पास होता है। मोहतरमा फरीदा शेख साहिबा ने भी जन्माष्टमी के हसीन मौके पर बहुत खूबसूरत नगमा भेजा है लता की आवाज़ में। क्या बात है। बांसुरी आके भाग पर अचरज करती क्यों, अरे बांसुरी आके भाग पर अचरज करती क्यों, लाखों छेद छिदाए तब लगी किशन के मुंह।

बांस कटे तो बांसुरी लगे किशन के हाथ। अरे बांस कटे तो बांसुरी लगे किशन के हाथ, और दर्द सुनाए आज वो और चोट पुरानी बात। कवि प्रदीप का कलाम था और मौसीकी थी सी रामचंद्र की। फिल्म नास्तिक 1954 की ये फिल्म है। फिल्म तो अपनी जगह थी लेकिन नगमे उसके एक से एक बढ़ के थे। लता मंगेशकर जी ने इस नगमे को पेश किया था। मोहतरमा फरीदा शेख, आपकी हर फरमाइश सराखों पर मौके मसले से आप भेजती हैं। फरमाइश आपकी आई है कैरी नॉर्थ कैरोलिना से, और अब एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से मोहतरम जनाब चिरंजीत लालजीन, मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश। ये भी मोहम्मद रफी की आवाज़ में है। ओह ये नगमा है, अच्छा ये बहुत प्यारा नगमा है, ज़रा सुने। इसकी कई फिल्मों में, नई फिल्मों में भी नकल हुई है, लेकिन आप याद रखेंगे कौन सी वाली है, आप मुझे मालूम है। छोरी छलकत गागरी किसकी प्यास बुझाए, समाज फरमाइएगा। ये भी मेरा नया दोहा है, इससे पहले वाला भी था। अरे छोरी छलकत गागरी किसकी प्यास बुझाए, मारे कहना आँख तो मटकी चटकी जाए। यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार।

ब्रिज बाला की बालियां कृष्ण के हाथ जो आई, अरे ब्रिज बाला की बालियां कृष्ण के हाथ जो आई, हाला बना के चांद का बाला को लौटाई। राजेंद्र कृष्ण का कलाम कल्याण जी आनंद जी की मौसीकी ब्लफ मास्टर वाज 1963 की ये फिल्म थी, जिसका ये खूबसूरत गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चरणजीत लाल जी एन कंचन लाल जी की फरमाइश पर बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम एन मोहतरमा। एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना से आपकी फरमाइश आई। अब कराची यानी के पाकिस्तान से फरमाइश आई है सुचित्रा टेक चंदानी की। अच्छा, और उन्होंने एक भजन भेजा है जो पाकिस्तान का बड़ा मशहूर अपने वक्त का भजन रहा है, बल्कि आज भी उसकी फरमाइश आती है। जैसे देखिए आपके सामने आ चुकी है सुचित्रा टेक चंदानी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज है टीना सानी की। पहले सबसे पहले इसको बिल्कीस खानम ने गाया था, टीना सानी ने आगे जाके इसको मशहूर किया। मौसीकी आशिक अली खान की थी और कलाम था इनका, वो कितना पुराना, असद मोहम्मद खान का। आज के बच्चे तोड़ खिलौने, समाज सुनाइए, छोटी सी बात है, छोटा सा शेर है, लेकिन अगर अच्छी लगेगी अगर आप गौर फरमाएंगे कि आज के बच्चे तोड़ खिलौने, कहते हैं अब चांद चाहिए,

रंग बरसात ने भरे कुछ तो। नासिर काजमी का कलाम है जहां तक मुझे इल्म है। रंग बरसात ने भरे कुछ तो और जख्म दिल के हुए हरे कुछ तो। शैलेंद्र का कलाम, सलील चौधरी की मौसीकी और दो बीघा जमीन, ये फिल्म का नाम था, 1953 की फिल्म थी ये, 53, वाओ। मन्ना डे की आवाज़, लता मंगेशकर जी की आवाज़ और मोहतरमा पूर्णिमा गुप्ता जी की फरमाइश और इम्तिहान। मोहतरम जनाब मोहसिन साहब, क्या बात है, वक्त हमारे पास है तो क्यों ना हम आपका नगमा पेश करें, दूसरी फरमाइश। बहुत खूबसूरत है, हाय हाय क्या बात है। हाय परवाने न जा महफिल अंधेरी देख कर। समाप्त फरमाइए मो भाई, आपको पसंद आएगा कि हाय परवाने न जा महफिल अंधेरी देख कर, शायद हो रोशन दिया सूरत को तेरी देखकर। यू आर लिसनिंग टू गीत प्रसार।

0: हम तो अब ना जाएंगे, अरे हम तो अब ना जाएंगे पनघट घूंघट काढ़ कर, हम तो अब ना जाएंगे पनघट घूंघट काढ़ कर, उनको कोई पहना दे घूंघट, देखें नजरें गाढ़ कर। शकील बदायूं के कलाम जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है, नौशाद की मौसीकी जैसे पहले अर्ज किया जा चुका है। मुगले आजम 1960 की ये फिल्म थी, ऑल टाइम हिट। इसका ये नगमा था लता मंगेशकर की आवाज़ में, और जब भी इस गाने को सुनते हैं लता जी की आवाज़ तो कानों में जाती है, लेकिन जहन में एक खूबसूरत फिगर और एक खूबसूरत शक्ल सामने आती है, और वो है मधुबाला की। मोहतरम जनाब चरणजीत लाल जी और मोहतरमा कंचन लाल जी की फरमाइश है, मधुबाला मेरी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं, जबकि पापा जी के ज़माने की होंगी लेकिन मुझे अभी तक पसंद नहीं, क्योंकि उनके फ़ोटो तो वैसे ही हैं, एक फ़ोटो मेरे ऑफिस के दरवाजे पर लगा है अगर आप देखना चाहें। मोहतरमा ज्योति करीर साहिबा की फरमाइश मॉरिसविल से आई है, और ये भी जो है वो जन्माष्टमी के मौके पर है, हैप्पी बर्थडे कृष्ण जी। लीजिए समात फरमाइए ये नगमा इस शेर के साथ। जमुना तट पे ठाड़ी राधा, ठाड़ी का मतलब है खड़ी हुई, जमुना तट पे ठाड़ी राधा ताज का रूप बनाए, ताजमहल आप जानते हैं जमुना पर ही है, जमुना तट पे ठाड़ी राधा ताज का रूप बनाए, और काला ताज किशन की सूरत नदी पार कब आए।
1: बड़ी

और मैं कहता हूँ ऊपर वाला कभी ना करता जानबूझकर फेर, अरे ऊपर वाला कभी ना करता जानबूझकर फेर, जीवन मौत समय पर होवे ना जल्दी ना देर। यू आर लिसनिंग टू गीत बजान।

0: आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर। आवाजें थी मोहम्मद रफी, अफरोज ताज और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम था कुछ ना पूछो। फरमाइश करने वाले थे नेवर माइंड। जैसे मैंने अर्ज किया, आपकी हर फरमाइश सर आंखों पर।
1: We respect your every request on Geek Bazaar, South Asia Radio, every Sunday 10 to 12 noon.

0: 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi.
1: 99.9 Dial up ko jao Pakka Desi.
2: Bazaar every Sunday 10 to 12 noon. Carry to Karachi, Raleigh to Rajasthan, Mumbai to Mombasa, Naples to Nepal, Missouri to Missouri, Niagara to Agra, Alabama to Allahabad, Lahoya to Lahore, Nevada to Noida, Carolina to Kerala, Chicago to Shikarpur, Louisiana to Louisiana, Oregon to Aurangabad, Tashkent to Kasgan, Utah to Eta, Texas to Texla, Virginia to Varanasi, Morrisville to Mauritius, Delaware to Delhi, Oklahoma to Okla, Dublin to Dubai, Baltimore to Butler House, Jarzak to Sharjah, Florida to Murodabad.
3: This is Geet Bazaar Radio, Naira Ki Peshkash. We are your hosts, Afroz Taj, John Caldwell and Ravi Chirukli. और साथ में ये भी कहता चलूं 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में मौजूद होते हैं इतवार के दिन.
4: You are listening to Geet Bazaar on Radio Naira 101.9 FM with new double broadcasting power. Also 99.9 HD4 and 1490 AM Raleigh Durham.
5: And don't forget to download the Radio Naira app so you can listen to Geet Bazaar and all of Radio Naira's wonderful Desi programming easily and from anywhere on your phone and other devices. The Radio Naira app can be obtained from the App Store and the Google Play Store. So it's really easy. Just download it and start listening.
2: خاتینو حضرات میں کہوں گا پہلے کہ دل کی لگی کو کیا کہیے سب کو ہسا کے چھوڑتی ہے. इसमें कोई शक नहीं, दिल लगी भी एक ऐसी चीज़ है कि लोग कहते हैं, हम कहते थे ना पहले ऐसा ना करना. मोहतरम जनाब सुखबीर सिंह और सुबीर कौर की फरमाइश आई है श्रूसबरी न्यू जर्सी से. वाह मुकेश और लता की आवाज़ में आपने जो फरमाइश की है लगन लगन से लगी हुई है और कह रही थी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ कह रहे थे कि हमको आपके प्रोग्राम से बड़ी लगन है. मैं कहता हूँ कि जब मुझको प्यार था मेरी हस्ती चमन लगी, जब मुझको प्यार था मेरी हस्ती चमन लगी, लेकिन लगन लगी तो मन में अगन लगी. यू आर लिसनिंग टू गीत बजा.

लगन से पहले कोई भी ना मेरे पास हुआ, अरे लगन से पहले कोई भी ना मेरे पास हुआ, और लगन लगी तो दुनिया को अब एहसास हुआ।

तेरी आंखें मुझको लेकर कहां गई ना जाने, समझ फरमाएं। अरे तेरी आंखें मुझको लेकर कहां गई ना जाने, मेरा खोया जाए तवाजुन क्यों लाया मैं खाने। यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

भूखे हैं फिर भी हमको खुदा से लगन रही, अरे भूखे हैं फिर भी हमको खुदा से लगन रही, अपना ना कोई है ना सही, बेवफा सही।

मन की लगन से बढ़कर कोई लगन नहीं। अरे मन की लगन से बढ़कर कोई लगन नहीं। जैसे जलन अगन से बढ़कर जलन नहीं।

दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया और दिल लगाने का नतीजा मिल गया। फिर सुने, दिल लगी ही दिल लगी में दिल गया और दिल लगाने का नतीजा मिल गया। मैं तो रोता हूं कि मेरा दिल गया और तू क्यों हंसता है, तुझे क्या मिल गया। यू आर लिसनिंग टू गीत बजा।

दिल को लगाना कोई भी मुश्किल तो नहीं है। समझ तो माए कि दिल को लगाना कोई भी मुश्किल तो नहीं है। हर दिल को अपने दिल से आजाद कीजिएगा।

0: अब शम्मा दिल जले का पता पूछ रही है। समझ फरमाइए कि अब शम्मा दिल जले का पता पूछ रही है, परवाना राख बन के जो अब हवा हुआ।
1: लागी रे

पौधा लगा के कोई जाने किधर गया। देखिए नया ख्याल है लेकिन बात वही है, पौधा लगा के कोई जाने किधर गया, उसकी लगन में पौधा जल जल के मर गया।

सजन से कर लगन मन से जो अपना जी जलाना है। समझ फरमाएं कि सजन से कर लगन मन से जो अपना जी जलाना है, कि जैसे खारजारों में कहीं बेला उगाना है।

कहते हैं पली फूल में मलका बहार की, कहते हैं पली फूल में मलका बहार की, उसकी पड़ी नजर तो बड़ी तीर सी लगी।

0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: सोचा है अपना वक्त से मैं दिल लगाऊंगा, समाज फरमाए सोचा है अपना वक्त से मैं दिल लगाऊंगा, जाता है तो वो लौट के पहचानता नहीं। इतनी जल्दी वक्त गुजरता है हुजूर वाला कि मैं बता नहीं सकता आपको। किशोर कुमार की आवाज आपने भी समाप्त फरमाई थी और साथ साथ फिल्म का नाम था हैफ टिकट, और इसके बाद वाला नगमा जमील सादिक साहब की फरमाइश कहाँ से, फेटविल से। अच्छा, फेटविल से जमील सादिक साहब ने फरमाया है कि चलते चलते जो नगमा होता है वो मेरा ही होना चाहिए और जन्माष्टमी के मौके पर एक प्यारा सा भजन होना चाहिए। तो जमील साहब देखिए ये भजन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, लेकिन मैं बता दूं पहले कि वक्त पानी की तरह से हाथ से निकल चुका है, जैसा आप जानते हैं 2 घंटे 2 मिनट में गुजर गए, और वक्त अगर अच्छा खासा होता है तो बड़ा बेवफा होता है, फौरन आते ही चला जाता है और अपने नखरे दिखाता है बड़े बड़े, तो उसको कैसे रोका जा सकता है भला। वक्त को कोई रोक नहीं सकता सिवाय इसके कि मैं फिर कहूँगा कि तुमको हमने ऐसा देखा जैसे देखा जा सकता था, फिर भी प्यारे 2 घंटों में कैसे देखा जा सकता था। चलते चलते मेरा कलाम भी आप सुनते जाएं, लेकिन मैं कहूंगा कि वी आर योर होस्ट सफरोस्ता जॉन कॉलवेल एंड रवि चिरकुड़ी, 10 से 12 सुबह 10 से 12 शाम हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं मेरे दोस्तों, एंड साथ साथ कहूंगा यू आर लिसनिंग टू गीत बाजार रेडियो नायरा की पेशकश। अच्छा आपके साथ वक्त निकला, अच्छा लगा, और चलते चलते मैं वक्त की शान में ये शेर कह दूं या वक्त की बुराई में जैसा आप कहें, अरे मुश्किल से वक्त पाया पल में निकल गया। समाप्त फरमाएं गौर से कि मुश्किल से वक्त पाया पल में निकल गया, मोहसिन मेरा अजीज लो नजरें बदल गया। मोहब्बत जिंदाबाद।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: रेडियो नायरा पर आप सुन रहे हैं गीतांजलि।
1: तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू, व्हाट हैपेंड।

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 440 90 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

Welcome back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira same hai, hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning, morning kaise ho aur wahi apna purana routine shuru hai, ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But thinking not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabri sunane wali hoon. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM SD4, 49 AM and 99.9 FM SD34 Telugu Naira Fame. मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। हमारे ट्रायंगल में 2016 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है। इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल्स आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज। Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 for Telugu, नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah, भाई तेरा बस लिखत गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन्हें दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए।

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 और 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डुनसन टॉक। पता है बहुत थकी आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 49 AM, 99.9 FM HD3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डूंस एंड टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है। हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as Jet Truck, Parachute, Jump Team and Aerobatic Pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout. The base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Naira, Paka Desi, Paka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM एंड 99.9 FM SD 3 4 तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिसविले, रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रच्चा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद। अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्वीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

फरमीर, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: Armito on the mic, writing what I feel.
1: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4:49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल एंड डॉट.
2: वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी स्पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है. वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास स्पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम. Each glass of speech is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiye ga nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio 9, paka desi, paka local.

0: वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 49 एएम 99.9 एफएम HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टून्स एंड टॉक। कहा था ना मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गया है और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ऑन 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा
1: 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Is the multi-dollar Gaani Kebab one more time? Welcome, Haji, on 101.9 FM, 99.9 FM, LG4 for 90 AM and 99.9 FM, LG3 for Telugu. Naira se main hoon aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dudes and Talk. ट्रायंगल में बहुत जल्दी विंडो वर्ल्ड 450 डॉट विक्स ओरो स्पीडवे सेलिब्रेट होने वाला है. डोंट मिस द विंडो वर्ल्ड 450 एज नॉट विक्स ओरो स्पीडवे. एक्सपीरियंस थ्रिलिंग नास्कर एक्शन लाइव. फील द रोर ऑफ इंजन एंड प्योर एक्साइटमेंट ऑफ हाई स्टेक रेसिंग. पॉइंट रेसिंग इज बैक एट नॉट विक्स ओरो. इट्स समर टाइम एंड स्पेक्टेकल्स एट वन ऑफ द नास्कर्स मोस्ट हिस्टोरिक ट्रैक. Don't miss epic tailgate and high-stake racing among the NASCAR's elite driving and team. The race is on. Multi-platinum country hitmaker is waiting for you. Filhal kahin jaiyega nahi, sun rahiye Monica ke saath Radio 9.

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु। नायरा सेम है, हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। वेलहमर क्रैंगल में 38th नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the NCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का दिल की पक्का लोकल।

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 फॉर तेलुगु नायरा फेम। मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। विलियम आर्क्रैंगल में बहुत जल्दी ग्रासी ट्री एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन्स। विद मोर देन 60 वेंडर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दिस फैमिली-फ्रेंडली इवेंट ऑफर्स समथिंग फॉर कलेक्टर एंड एंथुसियास्ट अलाइक, फ्रॉम स्टनिंग जेमस्टोन टू लैबोरेटरी टूल्स टू यूनिक स्पेसिमेंस hosted by Prayer, Fire and Refuse to support local equipment purchase. The show features free admission and parking on site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा।

माहौल गाना था ना, एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Radio Naira सुन रहे हैं आप। या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय, ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

कुछ जगहों से तो यादें और इमोशंस इतनी ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं, लाइक वी कीप गोइंग टू दैट प्लेस अगेन एंड अगेन, राइट? This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And you know, Samantha seeks blessings for her little one at the same temple where she got married. From prayers for a new beginning to prayers for her little one, some places hold a lifetime of blessing. बहुत खूबसूरत लग रहा है यार. मतलब अपने tradition में इतना ज़्यादा rooted रहना, superior power को इतना believe करना, मुझे लगता है ये इंसान को बहुत अच्छा बनाता है. Well, stay tuned for more filmy stories like this. I'll be back only on Naira.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज जूल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

मिर्जापुर द मूवी में इतने बेहतरीन गाने हैं, लेकिन उसमें जो पुराने गाने उन्हीं गानों को वापस से फिल्म में लिया गया, एंड देयर इज सम कॉपीराइट इशू, लेट्स नो व्हाट्स दैट। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency Nairan. You know, controversy involving Rajasthani rapper Rapparia Balam and the makers of Mirzapur the movie appears to have been resolved after music label Trooper Records confirmed that the song Surveer was legally licensed for the use in the film. This comes after the rapper alleged the track has been used without his consent. Rapparia Balam, whose real name is Ashok Bishnoi, had claimed the Axel Entertainment used Surveer in the film without informing him, especially in a scene that he felt ended up glorifying gangsters. Addressing the allegations without directly referencing them, Trooper Records, the label owning the song, issued a statement confirming the proper licensing. OMG, मतलब आजकल मूवीज में पुराने गानों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक जो गाने पहले इंडी आर्टिस्ट ने बनाए हुए उन्हें वो उठाकर फिल्मों में डाल देते हैं, एंड दे लीड्स अप टू सच कॉन्ट्रोवर्सीज एनी वे। सो देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ एंजॉय ऑल द अपकमिंग सॉन्ग्स ओनली ऑन नाइट।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM। पक्का देसी, पक्का लोकल।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

है रेडियो नायर अपर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूं आपके साथ, मिटाता हूं आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूं आपके मूड को रिफ्रेश। आज है मंडे यानी हफ्ते का पहला दिन। मोटिवेट रह के काम करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप मोटिवेट रह के काम नहीं करोगे और सोचोगे यार वीकेंड में ही कितना सही चल रहा था, तो वो मंडे कभी भी मोटिवेटिंग नहीं रहने वाला है। इनफैक्ट स्ट्रेसफुल तो अलग से रहने वाला है। इसलिए चीर यार, डू योर वर्क ऑनेस्टली, दैट्स द रीज़न बिहाइंड कि आप स्ट्रेसफुल ना रहे। ये चीज़ें करनी ही होगी आपको। अगर कंफर्ट जोन में रहेंगे तो चीज़ें डेफिनेटली वर्कआउट नहीं करती है। होता है संडे से एकदम मंडे में एंटर हो जाना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बट करना तो पड़ेगा। एंजॉय करते हैं ये पहला गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।

किया आपने ये गाना, जो कि था वाकई में काफी ब्यूटीफुल और जिसने बहुत हद तक आपका स्ट्रेस जो है वो मिटा दिया है, क्योंकि आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड रुख करते हैं बॉलीवुड की खबरें तो नहीं, लेकिन लोकल न्यूज से हमारे शो की शुरुआत होती है। तो पहली न्यूज ये है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और मौसम का अलर्ट। जी हाँ, इस लेबर डे वीकेंड पर ट्रैवल क्षेत्र में भीषण गर्मी जो है वो देखी गई। रैली दरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट RDU का तापमान 101 डिग्री फॉरेन हाइट तक पहुंच गया। कैन यू इमेजिन 101 डिग्री फॉरेन हाइट, जिसने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि नेशनल वेदर सर्विस ने वेक, दरम और ऑरेंज काउंटियों के लिए आंधी तूफान और तेज हवाओं का अलर्ट जो है वो जारी कर रखा है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

0: हेलो हाय कैसे काय, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड गर्मी, भीषण गर्मी कई इलाकों में देखी जा रही है, तो गर्मी में हाइड्रेटेड रहना ये बहुत ज़रूरी है। पानी की बोतल तो हमेशा साथ रखिए और धीरे धीरे पानी पीते रहिए। अगली खबर ये है कि रैली कन्वेंशन सेंटर में दूसरे वार्षिक गेम एंड गिक एक्सपो 2026 का सफल आयोजन हुआ। इस वीकेंड यहाँ ई स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं, कॉस्प्ले और 150 से अधिक वेंडर्स के साथ गेमिंग के शौकीनों की भारी भीड़ जो है वो उमड़ी। मतलब ये इतना सही फेस्टिवल और इतना सही आयोजन किया गया था कि किसी भी तरह की दिक्कत इस फेस्टिवल में देखी नहीं गई है। एंड यू नो लाइक ये बहुत ही एनर्जेटिक चल रहा था। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, कैसे चल रही है आपकी आज की ये शाम।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: कहूंगा कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

स्ट्राइक ये गाना गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। हेलो हाय कसक काय, आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स एंड डाउनटाउन रैली में डिक्स पार्क के पास 21.8 मिलियन डॉलर के बड़े सड़क सुधार प्रोजेक्ट के चलते लेक व्हीलर रोड के एक हिस्से को अगले 2 साल के लिए बंद कर दिया गया है। आई एम रिपीटिंग, अगले 2 साल के लिए बंद कर दिया है। यहाँ नए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक जो है वो बनाए जाएंगे, इसीलिए आपको दूसरा वे फाइंड आउट करना है और चेक करना है अल्टरनेटिव वे, तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल मौसम तो इतना प्यारा चल रहा है एंड इस मौसम में एक अच्छा सा गाना सुनाने का मन मेरे सभी प्यारे लिसनर्स को मेरा कर रहा है, तो सुनते अगला ही गाना, बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

रेडियो नायरा 101.9 एंड बहुत अच्छा लग रहा है। आज का मौसम तो थोड़ा 19-20 नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी जो मंडे की वाइब है इतनी स्ट्रेसफुल नहीं लग रही है। एंड कुछ नई बिगनिंग, मंडे यानी नई बिगनिंग, कुछ नई बिगनिंग होने जा रही है ऐसा लग रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब कुछ तो भी ऐसा हैपनिंग होने वाला है ऐसा लग रहा है। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन 35 to 40 के बीच का जो ये टाइम होता है, तब वर्कआउट की आदत डालना, अच्छे खाने की हैबिट डालना, ये बहुत अच्छी है। अगर अब भी ये आदत सुधरती नहीं है तो आगे बहुत गहरी खाई है जिसमें आप फंसते जाओगे। इसलिए वर्कआउट करना, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना काफ़ी ज़रूरी है। और जो घी बटर में आप तलते हुए पदार्थ खा रहे हैं उसे भी कम करना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।